0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब कुछ मजीद खबरें। ईरान के मरहूम रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई के तीन बेटों ने इतवार को दारुलहुकूमत तेहरान में उनकी आखिरी रसूमात के दूसरे दिन शिरकत की, लेकिन ज़राए इब्लाग के इदारों ने उनके बेटे मुश्तबा खामनाई के बारे में कोई खबर नहीं दी, जो अपने वालिद के बाद मुल्की रहबर आला के मनसब पर फाइज हुए हैं। सरकारी टेलीविजन ने तीनों बेटों को रोते हुए दिखाया जब उनके वालिद का ताबूत जनाजे के मकाम पर ले जाया गया। फिर तीनों ने मिलकर ताबूत के पास नमाज अदा की। अब तवज्जो इस बात पर है कि आया मुश्तबा जुमेरात को अपने वालिद की तदफीन के मौके पर अवाम के सामने आएंगे या नहीं। चीन की वजारत दिफा ने इतवार को कहा कि मुल्क की बहरिया इस माह रूसी बहरिया के साथ चीन के मशरकी शहर चिंगदाओ के करीब बहरी और फजाई हदूद में मुश्तरक मश्क करेगी। वजारत ने कहा कि मश्क का मकसद मुश्तरक तौर पर सिक्योरिटी चैलेंजेस का जवाब देना और इलाकाई अमन इस्तेकाम की हिफाजत करना है। वजारत ने कहा कि मश्क के बाद दोनों अतराफ की कुछ अफवाज बहरुलकाहिल के मुतल्लिका इलाकों में मुश्तरक समंदरी गश्त करेंगी। सरकारी शिनहुआ न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि मश्क में हिस्सा लेने वाले जहाज़ों में चीन के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एक आबदोस के अलावा एक रूसी गाइडेड मिसाइल क्रूजर और एक आबदोस शामिल हैं। दोनों फरीक दूसरे तरबियती मंजरनामों के अलावा मुश्तरक जासूसी मिसाइल दिफा और मैरीटाइम स्ट्राइक ऑप्शंस माफ कीजिएगा ऑपरेशंस करेंगे। दोनों अतराफ के अहलकार मुतल्लिका बहरी जहाज़ों के दौरों का भी एहतमाम करेंगे। दोनों ममालिक 2012 से तकरीबन हर साल मुश्तरक मशकें करते आए हैं। इतवार के रोज वस्ती जापान के शिजुओका प्रीफेक्चर के एक गर्म चश्मा तफरी शहर इतो में मौसम गर्मा के आगाज के एक मुनफरिद इवेंट वॉश टब रेस का इनेकाद किया गया। ये इवेंट हर साल तकरीबन इन्हीं दिनों दरियाए इतो ओकावा पर मुनक़िद होता है। रेस में मकामी अफराद और सयाहों समेत तकरीबन 270 अफराद ने हिस्सा लिया। कुछ शुरका ने आम मलबूसात पहने हुए थे जबकि दीगर मौसम गर्मा के किमोनों में मलबूस थे, जिसे युकाता कहा जाता है। तकरीबन 1 मीटर कुतर के टबों में बैठे हुए शुरका इब्तदाई इशारा मिलने पर रवाना हुए और चावल के बड़े पतीलों से मिलते जुलते टबों को लकड़ी के बड़े चप्पुओं के साथ चलाते हुए 400 मीटर नीचे की तरफ फिनिश लाइन तक गए। जब कुछ शुरका अपना तवाजुन खो बैठे और उलट गए, फिर अपने टबों में वापस चढ़ने के लिए जिद्दोजहद करते रहे तो तमाशाइयों ने उन्हें दाद दी।
1: अब आज की चंद अहम खबरों की सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। जापान के महकमे मौसमियात का कहना है कि मौसमी बारिशों के एक ठहरे हुए निज़ाम के बायस पीर के रोज शुमाली क्यूशो में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहा। वेनेजुएला की हुकूमत का कहना है कि 24 जून को मुल्क में आए दो शदीद जल्जलों के बाद से अब तक 3,000 से ज्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। जापान के खलाई तहकीक के मिशन हायाबुसा 2 ने खला में अपनी अगली मंजिल की तरफ जाते हुए एक स्यारचे का दोहराने परवाज मुशाहिदा मुकम्मल कर लिया है। एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 7 जुलाई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। चीन ने पनडुब्बी से मिसाइल का प्रायोगिक प्रक्षेपण किया है, जिससे इस क्षेत्र के देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन के अनुसार ये परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप था और संबंधित देशों को इसके कार्यक्रम की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। चीनी नौसेना के अनुसार उसकी पनडुब्बी ने सोमवार दोपहर को एक सामरिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया, जिस पर नकली विस्फोटक सामग्री लदी थी। नौसेना ने बताया कि ये मिसाइल योजनानुसार प्रशांत महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में गिरी। नौसेना ने मिसाइल के गिरने की सटीक जगह का खुलासा नहीं किया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध समाचार पत्र द ग्लोबल टाइम्स ने अपने ऑनलाइन लेख में चीनी विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि परीक्षण में शायद जुलांग 3 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसे पिछले साल सितंबर में हुई सैन्य परेड में दिखाया गया था। लेख के अनुसार इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से अधिक है, यानी इसके दायरे में दक्षिणी और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र आ सकते हैं। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कहना है कि 1982 के बाद ये चीनी नौसेना का पनडुब्बी से किया गया पहला ज्ञात मिसाइल परीक्षण है और परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी से किया गया ये अब तक का पहला परीक्षण है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग का कहना है कि ये परीक्षण एक नियमित सैन्य प्रशिक्षण था और इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट देश या लक्ष्य को निशाना बनाना नहीं था। उन्होंने कहा कि परीक्षण कार्यक्रम की सूचना संबंधित देशों को पहले ही दे दी गई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून व अंतर्राष्ट्रीय तौर तरीकों के अनुरूप था। इसके बावजूद इस परीक्षण ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की चिंताएँ बढ़ा दी हैं। प्रमुख अमरीकी समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने मंगलवार को होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट 2 व्यावसायिक जहाज़ों पर मिसाइलें दागी। अखबार ने एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी के हवाले से बताया कि इनमें से एक जहाज़ कतर की एक कंपनी के स्वामित्व वाला LNG गैस टैंकर प्रतीत होता है। इससे पहले ब्रिटेन के समुद्री व्यापार संचालन यानी UKMTO ने बताया था कि उसे होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट ओमान के तट के पास एक टैंकर पर अज्ञात वस्तु से हमला होने और टैंकर में आग लगने की सूचना मिली है, हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। 25 जून को भी जलडमरू मध्य के निकट एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ था, जिसके बाद 27 जून को एक अन्य टैंकर पर हमला हुआ था। ये हमले अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्ति से जुड़े समझौता ज्ञापन के प्रभावी होने के बाद हुए। उस समय अमेरिकी सेना ने बताया था कि जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया, जिसके जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान में रडार स्थलों, ड्रोन भंडारण सुविधाओं और अन्य ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोप लगाए थे। जापान स्थित उक्रेनी वाणिज्य मंडल ने जापान को नागरिक उपयोग के लिए उक्रेन की नवीनतम ड्रोन तकनीक उपलब्ध कराने से जुड़ी एक सहयोगात्मक व्यवस्था की नींव रखी है। गौरतलब है कि उक्रेनी वाणिज्य मंडल की स्थापना जापान में रह रहे उक्रेनी नागरिकों और अन्य लोगों ने की थी। जापान उक्रेन ड्रोन क्लस्टर नामक इस व्यवस्था के लिए सोमवार को टोक्यो में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। लगातार जारी रूसी आक्रमण के बीच यूक्रेन ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे ड्रोन खराब संचार परिस्थितियों और सीमित GPS कनेक्टिविटी में भी काम कर पाते हैं। माना जाता है कि जापान में आपदा राहत व लॉजिस्टिक सेवाओं में ये तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है। क्लस्टर व्यवस्था का उद्देश्य दोनों देशों की संबंधित कंपनियों को आपस में जोड़ना है। मंडल के अनुसार 4 जापानी कंपनियां इसमें भाग लेने के लिए पहले से तैयार हैं।

0: जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने तोरी फुने गृहिका की छवियां जारी की हैं, जिसे एक खोजीयान ने पास से गुजरते समय ली थी। हयाबुसा 2 खोजीयान जापान समयानुसार रविवार शाम 6:30 बजे पृथ्वी से लगभग 10 करोड़ किलोमीटर दूर इस गृहिका के पास से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गुजरा। जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी जाक्सा ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में ये छवियां दिखाई। हयाबुसा 2 की तोरीफुने गृहिका के सबसे करीब आने से 1 सेकंड पहले एक तस्वीर ली, जिसमें स्नोमैन आकृति की गृहिका और उसकी सतह पर कई चट्टानें देखी जा सकती हैं। जाक्सा ने सतह के तापमान को मापने में सक्षम कैमरे सहित अन्य उपकरणों की मदद से गृहिका का अवलोकन करने में भी सफलता प्राप्त की। एजेंसी का कहना है कि वो खोजीयान से प्राप्त सभी डाटा को पृथ्वी पर भेजेगी। रियुग्यू गृहिका से प्राप्त रेत और अन्य नमूनों वाले कैप्सूल को 2020 में पृथ्वी पर भेजने के बाद हयाबुसा 2 का यह विस्तारित मिशन शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत उसे तोरीफुने गृहिका के पास से गुजरना था। इस यान का अंतिम लक्ष्य 2031 में एक अन्य गृहिका पर पहुंचना है। जापान में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या पहली बार 10 लाख से नीचे आ गई है, जो किसानों की बढ़ती उम्र दर्शाती है। कृषि वानिकी एवं मत्स्य मंत्रालय ने एक सर्वेक्षण जारी किया, जिसके अनुसार इस वर्ष फरवरी में मुख्य रूप से खेती का काम करने वाले लोगों की संख्या 9,86,600 थी। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 4.8% की गिरावट आई है और 1985 में तुलनात्मक डाटा उपलब्ध होने के बाद से पहली बार ये आंकड़ा 10 लाख से कम है। 2010 में ऐसे लोगों की संख्या 20 लाख से अधिक थी और तब से ये संख्या 50% से भी कम हो गई है। आयु वर्ग के हिसाब से 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसानों का अनुपात 35.3% था, उसके बाद 70 से 74 वर्ष की आयु का 21.2% और 65 से 69 वर्ष की आयु के किसानों का अनुपात 13.7% था। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि किसानों की संख्या में गिरावट का रुझान जारी रहेगा, क्योंकि उनमें से कई बुजुर्ग हैं। उनका ये भी कहना है कि जापान की कृषि उत्पादन क्षमता में गिरावट को रोकने के प्रयास में वे कृषि भूमि को मिलाकर उसके पैमाने का विस्तार करने तथा कुशलता में सुधार करने के प्रयासों में सहायता करना चाहते हैं।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 19वें पाठ में दुकानदार को ये बताना सीखेंगे कि आप क्या खरीदने आए हैं।
1: ताम वियतनाम से आई विदेशी छात्रा है और हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस के ही दूसरे निवासियों मिया और काइतो के साथ उत्तरी जापान में होक्काइडो जाने वाली है। होक्काइडो में बहुत ठंड पड़ती है। वहां जाने की तैयारी करने के लिए ताम और मिया दस्ताने खरीद रही हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 19वें पाठ की बातचीत।
2: अनो सुमिमासेन तेबुकुरो गा होशी देसु गा।
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले ताम ने दुकानदार से कहा,
2: すみません。
1: माफ कीजिए,
2: तेबुकुरो गा होशीन देसु गा,
1: दस्ताने चाहिए।
0: दुकानदार ने जवाब दिया,
3: तेबुकुरो वा कोचिरा देस,
0: दस्ताने यहाँ हैं।
1: फिर मिया ने दस्तानों की एक जोड़ी दिखाते हुए कहा,
2: कोरे अत्तकसो,
1: ये गर्म लगते हैं।
0: ताम ने दस्ताने पहन कर देखे,
2: ई देस ने,
1: अच्छे हैं।
2: कोरे इकुरा देस का,
1: ये कितने के हैं?
0: दुकानदार ने बताया,
3: 1900 येन देस,
0: 1900 येन के।
1: फिर ताम ने पूछा,
2: कार्ड वा त्स्काएमास का,
1: कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: तो दुकानदार ने उत्तर दिया,
3: हाई त्स्काएमास,
0: जी कर सकते हैं।
1: सर्दियों में होक्काइडो का तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ये दस्ताने ताम के बहुत काम आएंगे।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
2: तेबुकुरो गा होशीन देसु गा,
0: यानी दस्ताने चाहिए। ये वाक्य याद करके आप दुकानदार को बता सकेंगे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं।
1: इस वाक्य में
4: तेबुकुरो
1: का अर्थ है दस्ताने और
4: होशीन देसु गा
1: का मतलब है चाहिए।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी हो और आप चाहते हो कि दुकानदार आपको वो चीज दिखाए, तो उस चीज के नाम के बाद लगाएं कारक
4: गा
0: और उसके बाद कहें
4: होशीन देसु गा, होशीन देसु गा।
1: बना है ई विशेषण
4: होशी
1: यानी चाहिए के बाद
4: देसु गा
1: जोड़कर
4: देसु गा
1: का उपयोग अपनी बात समझाने और सुनने वाले से मदद का अनुरोध करने के लिए किया जाता है।
0: यहाँ तेबुकुरो यानी दस्ताने के बाद आया है गा और उसके बाद होशीन देस गा, इसलिए वाक्य बना तेबुकुरो गा होशीन देस गा, यानी दस्ताने चाहिए।
1: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान रखिएगा कि वाक्य के अंतिम शब्द का सुर नीचे रखना है।
4: होशीन देस गा, तेबुकुरो गा होशीन देस गा।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला कुछ खरीदना चाहती है।
5: अनो सुमिमासेन, होक्काइडो नो ओमियागे गा होशीन देसु गा।
6: सो देसु ने, कोनो ओकाशी वा इकागा देसु का।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
0: पहले महिला ने पूछा,
5: अनो सुमिमासेन, होक्काइडो नो ओमियागे गा होशीन देसु गा।
1: माफ कीजिए, होक्काइडो का उपहार चाहिए।
4: अनो
0: का भाव है और इसका उपयोग किसी को आवाज लगाने के लिए किया जा सकता है।
4: ओमियागे
0: का अर्थ है उपहार।
1: अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि परिजनों या मित्रों के लिए जापान से क्या उपहार लेकर जाएं, तो आप दुकानदार से ये सवाल पूछकर उनकी सलाह ले सकते हैं। तो अब सुनते हैं कि जवाब में दुकानदार ने क्या कहा।
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: あっちゃ、ये मिठाई कैसी रहेगी?
1: इसमें?
4: そうですね。
1: का अर्थ है अच्छा। इसका इस्तेमाल जवाब सोचते समय किया जाता है।
4: このお菓子
1: का मतलब है ये मिठाई और
4: いかがですか?
1: का अर्थ है कैसी रहेगी?
0: तो अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सामान बांधने का पारंपरिक जापानी कपड़ा यानी
4: फुरोशिकी
1: खरीदना चाहते हैं, तो दुकानदार को ये कैसे बताएंगे?
2: अनो सुमिमासेन, फुरोशिकी गा होशी इन देसु गा।
0: अब मान लीजिए कि आप शहर में टहल रहे हैं और अचानक बारिश होने लगी। आप एक कन्वीनियंस स्टोर में चले गए और दुकानदार से ये कहना चाहते हैं कि आपको छाता चाहिए। छाते को जापानी भाषा में कहते हैं
4: कासा।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: あの、すみません。傘が欲しいんですが。
1: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
2: कार्ड वा त्स्काएमासु का?
4: कार्ड वा त्स्काएमासु का?
0: का अर्थ है कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसमें
4: कार्ड
1: का मतलब है क्रेडिट कार्ड। पूरे शब्द का उच्चारण है
4: क्रेडिट कार्ड।
1: आप अपना कार्ड दिखाते हुए ये भी कह सकते हैं
4: कोनो कार्ड वा त्स्काएमासु का,
1: यानी इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
4: कार्ड वा त्स्काएमासु का?
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: अनो सुमिमासेन, तेबुक्रो गा होशी इन देसु गा।
3: तेबुक्रो वा कोचिरा देसु।
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
7: ハルさんの知恵袋。
0: अब सुनिए हारू जी की सलाह, जिसमें हम आज बात करेंगे जापान में क्रेडिट कार्ड के उपयोग की।
1: जापान में आप होटलों, डिपार्टमेंट स्टोरों और ऑनलाइन खरीदारी में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी दुकानें ऐसी भी हैं जहां इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता।
0: हालांकि इन दिनों क्रेडिट कार्ड और कैशलेस यानी नकद रहित भुगतान करने के तरीके आम होते जा रहे हैं, मगर कम आबादी वाले क्षेत्रों में बहुत सारी छोटी दुकानें और अन्य सुविधाएं केवल नकदी ही लेती हैं, जिससे विदेशी पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
1: वैसे क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाली दुकानों की संख्या बढ़ रही है। कुछ ऐसे एटीएम भी हैं जिनसे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जापानी येन निकाल सकते हैं। आमतौर पर डाकघरों और कन्वीनियंस स्टोरों में एटीएम होते हैं और उनमें विदेशी कार्ड भी चलते हैं।
0: फिर भी जापान में घूमते समय नकदी साथ रखना अच्छा है। ये जानकारी भी पहले से इकट्ठा कर लेना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ होक्काइडो जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 7 जुलाई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। चीन ने पनडुब्बी से मिसाइल का प्रायोगिक प्रक्षेपण किया है, जिससे इस क्षेत्र के देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन के अनुसार ये परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप था और संबंधित देशों को इसके कार्यक्रम की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। चीनी नौसेना के अनुसार उसकी पनडुब्बी ने सोमवार दोपहर को एक सामरिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया, जिस पर नकली विस्फोटक सामग्री लदी थी। नौसेना ने बताया कि ये मिसाइल योजनानुसार प्रशांत महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में गिरी। नौसेना ने मिसाइल के गिरने की सटीक जगह का खुलासा नहीं किया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध समाचार पत्र द ग्लोबल टाइम्स ने अपने ऑनलाइन लेख में चीनी विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि परीक्षण में शायद जुलांग 3 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसे पिछले साल सितंबर में हुई सैन्य परेड में दिखाया गया था। लेख के अनुसार इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से अधिक है, यानी इसके दायरे में दक्षिणी और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र आ सकते हैं। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कहना है कि 1982 के बाद ये चीनी नौसेना का पनडुब्बी से किया गया पहला ज्ञात मिसाइल परीक्षण है और परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी से किया गया ये अब तक का पहला परीक्षण है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग का कहना है कि ये परीक्षण एक नियमित सैन्य प्रशिक्षण था और इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट देश या लक्ष्य को निशाना बनाना नहीं था। उन्होंने कहा कि परीक्षण कार्यक्रम की सूचना संबंधित देशों को पहले ही दे दी गई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून व अंतर्राष्ट्रीय तौर तरीकों के अनुरूप था। इसके बावजूद इस परीक्षण ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। प्रमुख अमरीकी समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने मंगलवार को होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट 2 व्यावसायिक जहाजों पर मिसाइलें दागी। अखबार ने एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी के हवाले से बताया कि इनमें से एक जहाज कतर की एक कंपनी के स्वामित्व वाला LNG गैस टैंकर प्रतीत होता है। इससे पहले ब्रिटेन के समुद्री व्यापार संचालन यानी UKMTO ने बताया था कि उसे होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट ओमान के तट के पास एक टैंकर पर अज्ञात वस्तु से हमला होने और टैंकर में आग लगने की सूचना मिली है, हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। 25 जून को भी जलडमरू मध्य के निकट एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ था, जिसके बाद 27 जून को एक अन्य टैंकर पर हमला हुआ था। ये हमले अमरीका और ईरान के बीच युद्ध समाप्ति से जुड़े समझौता ज्ञापन के प्रभावी होने के बाद हुए। उस समय अमरीकी सेना ने बताया था कि जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया, जिसके जवाब में अमरीकी सेना ने ईरान में रडार स्थलों, ड्रोन भंडारण सुविधाओं और अन्य ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोप लगाए थे। जापान स्थित उक्रेनी वाणिज्य मंडल ने जापान को नागरिक उपयोग के लिए उक्रेन की नवीनतम ड्रोन तकनीक उपलब्ध कराने से जुड़ी एक सहयोगात्मक व्यवस्था की नींव रखी है। गौरतलब है कि उक्रेनी वाणिज्य मंडल की स्थापना जापान में रह रहे उक्रेनी नागरिकों और अन्य लोगों ने की थी। जापान उक्रेन ड्रोन क्लस्टर नामक इस व्यवस्था के लिए सोमवार को टोक्यो में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। लगातार जारी रूसी आक्रमण के बीच उक्रेन ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे ड्रोन खराब संचार परिस्थितियों और सीमित GPS कनेक्टिविटी में भी काम कर पाते हैं। माना जाता है कि जापान में आपदा राहत व लॉजिस्टिक सेवाओं में ये तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है। क्लस्टर व्यवस्था का उद्देश्य दोनों देशों की संबंधित कंपनियों को आपस में जोड़ना है। मंडल के अनुसार 4 जापानी कंपनियां इसमें भाग लेने के लिए पहले से तैयार हैं।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने तोरी फुने गृहिका की छवियां जारी की हैं, जिसे एक खोजीयान ने पास से गुजरते समय ली थी। हयाबुसा 2 खोजीयान जापान समयानुसार रविवार शाम 6:30 बजे पृथ्वी से लगभग 10 करोड़ किलोमीटर दूर इस गृहिका के पास से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गुजरा। जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी जाक्सा ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में ये छवियां दिखाई। हयाबुसा 2 की तोरीफुने गृहिका के सबसे करीब आने से 1 सेकंड पहले एक तस्वीर ली, जिसमें स्नोमैन आकृति की गृहिका और उसकी सतह पर कई चट्टाने देखी जा सकती हैं। जाक्सा ने सतह के तापमान को मापने में सक्षम कैमरे सहित अन्य उपकरणों की मदद से गृहिका का अवलोकन करने में भी सफलता प्राप्त की। एजेंसी का कहना है कि वो खोजीयान से प्राप्त सभी डाटा को पृथ्वी पर भेजेगी। रियुग्यू गृहिका से प्राप्त रेत और अन्य नमूनों वाले कैप्सूल को 2020 में पृथ्वी पर भेजने के बाद हयाबुसा 2 का यह विस्तारित मिशन शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत उसे तोरीफुने गृहिका के पास से गुजरना था। इस यान का अंतिम लक्ष्य 2031 में एक अन्य गृहिका पर पहुंचना है। जापान में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या पहली बार 10 लाख से नीचे आ गई है, जो किसानों की बढ़ती उम्र दर्शाती है। कृषि वानिकी एवं मत्स्य मंत्रालय ने एक सर्वेक्षण जारी किया, जिसके अनुसार इस वर्ष फरवरी में मुख्य रूप से खेती का काम करने वाले लोगों की संख्या 9,86,600 थी। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 4.8% की गिरावट आई है और 1985 में तुलनात्मक डाटा उपलब्ध होने के बाद से पहली बार ये आंकड़ा 10 लाख से कम है। 2010 में ऐसे लोगों की संख्या 20 लाख से अधिक थी और तब से ये संख्या 50% से भी कम हो गई है। आयु वर्ग के हिसाब से 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसानों का अनुपात 35.3% था, उसके बाद 70 से 74 वर्ष की आयु का 21.2% और 65 से 69 वर्ष की आयु के किसानों का अनुपात 13.7% था। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि किसानों की संख्या में गिरावट का रुझान जारी रहेगा, क्योंकि उनमें से कई बुजुर्ग हैं। उनका ये भी कहना है कि जापान की कृषि उत्पादन क्षमता में गिरावट को रोकने के प्रयास में वे कृषि भूमि को मिलाकर उसके पैमाने का विस्तार करने तथा कुशलता में सुधार करने के प्रयासों में सहायता करना चाहते हैं।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 19वें पाठ में दुकानदार को ये बताना सीखेंगे कि आप क्या खरीदने आए हैं।
1: ताम वियतनाम से आई विदेशी छात्रा है और हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस के ही दूसरे निवासियों मिया और काइतो के साथ उत्तरी जापान में होक्काइडो जाने वाली है। होक्काइडो में बहुत ठंड पड़ती है। वहां जाने की तैयारी करने के लिए ताम और मिया दस्ताने खरीद रही हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 19वें पाठ की बातचीत।
2: अनो सुमिमासेन तेबुक्रो गा होशी इन देसु गा।
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले ताम ने दुकानदार से कहा,
2: あの、すみません。
1: माफ कीजिए,
2: तेबुक्रो गा होशी इन देसु गा,
1: दस्ताने चाहिए।
0: दुकानदार ने जवाब दिया,
3: तेबुक्रो वा कोचिरा देसु,
0: दस्ताने यहाँ हैं।
1: फिर मिया ने दस्तानों की एक जोड़ी दिखाते हुए कहा,
2: कोरे अत्तकासो,
1: ये गर्म लगते हैं।
0: ताम ने दस्ताने पहन कर देखे,
2: ई देसु ने,
1: अच्छे हैं।
2: कोरे इकुरा देसु का,
1: ये कितने के हैं?
0: दुकानदार ने बताया,
3: 1900 येन देसु,
0: 1900 येन के।
1: फिर ताम ने पूछा,
2: कार्ड वा त्स्काएमासु का,
1: कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: तो दुकानदार ने उत्तर दिया,
3: हाई त्स्काएमासु,
0: जी कर सकते हैं।
1: सर्दियों में होक्काइडो का तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ये दस्ताने ताम के बहुत काम आएंगे।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
2: तेबुक्रो गा होशी इन देसु गा,
0: यानी दस्ताने चाहिए। ये वाक्य याद करके आप दुकानदार को बता सकेंगे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं।
1: इस वाक्य में
4: तेबुक्रो
1: का अर्थ है दस्ताने और
4: होशी इन देसु गा
1: का मतलब है चाहिए।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी हो और आप चाहते हो कि दुकानदार आपको वो चीज दिखाए, तो उस चीज के नाम के बाद लगाएं कारक
4: गा
0: और उसके बाद कहें
4: होशी इन देसु गा, होशी इन देसु गा।
1: बना है ई विशेषण
4: होशी
1: यानी चाहिए के बाद
4: देसु गा
1: जोड़कर
4: देसु गा
1: का उपयोग अपनी बात समझाने और सुनने वाले से मदद का अनुरोध करने के लिए किया जाता है।
0: यहाँ तेबुक्रो यानी दस्ताने के बाद आया है गा और उसके बाद होशीन देसगा, इसलिए वाक्य बना तेबुक्रो गा होशीन देसगा, यानी दस्ताने चाहिए।
1: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान रखिएगा कि वाक्य के अंतिम शब्द का सुर नीचे रखना है।
4: होशीन देसगा, तेबुक्रो गा होशीन देसगा।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला कुछ खरीदना चाहती है।
5: अनो सुमिमासेन, होक्काइडो नो ओमियागे गा होशी इन देसु गा।
6: सो देसु ने, कोनो ओकाशी वा इकागा देसु का।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
0: पहले महिला ने पूछा,
5: अनो सुमिमासेन, होक्काइडो नो ओमियागे गा होशी इन देसु गा।
1: माफ कीजिए, होक्काइडो का उपहार चाहिए।
4: अनो
0: का भाव है और इसका उपयोग किसी को आवाज लगाने के लिए किया जा सकता है।
4: ओमियागे
0: का अर्थ है उपहार।
1: अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि परिजनों या मित्रों के लिए जापान से क्या उपहार लेकर जाएं, तो आप दुकानदार से ये सवाल पूछकर उनकी सलाह ले सकते हैं। तो अब सुनते हैं कि जवाब में दुकानदार ने क्या कहा।
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: あっちゃ、ये मिठाई कैसी रहेगी?
1: इसमें?
4: そうですね。
1: का अर्थ है अच्छा। इसका इस्तेमाल जवाब सोचते समय किया जाता है।
4: このお菓子
1: का मतलब है ये मिठाई और
4: いかがですか?
1: का अर्थ है कैसी रहेगी?
0: तो अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सामान बांधने का पारंपरिक जापानी कपड़ा यानी
4: फुरोशिकी
1: खरीदना चाहते हैं तो दुकानदार को ये कैसे बताएंगे?
2: あの、すみません。फुरोशिकी が欲しいんですが。
0: अब मान लीजिए कि आप शहर में टहल रहे हैं और अचानक बारिश होने लगी। आप एक कन्वीनियंस स्टोर में चले गए और दुकानदार से ये कहना चाहते हैं कि आपको छाता चाहिए। छाते को जापानी भाषा में कहते हैं
4: कासा।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: あの、すみません。

0: 傘が欲しいんですが。
1: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की जो ताम की पंक्ति है आप ही इसे याद कर लीजिए
2: कार्ड वा त्स्काएमास का
3: कार्ड वा त्स्काएमास का
4: का अर्थ है कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं
1: इसमें
3: कार्ड
1: का मतलब है क्रेडिट कार्ड पूरे शब्द का उच्चारण है
3: क्रेडिट कार्ड
1: आप अपना कार्ड दिखाते हुए ये भी कह सकते हैं
3: कोनो कार्ड वा त्स्काएमास का
1: यानी इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं
4: तो आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए
3: कार्ड वा त्स्काएमास का
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
5: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
5: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
5: はい、使えます。
6: ハルさんの知恵袋。
4: अब सुनिए हारू जी की सलाह जिसमें हम आज बात करेंगे जापान में क्रेडिट कार्ड के उपयोग की
1: जापान में आप होटलों डिपार्टमेंट स्टोरों और ऑनलाइन खरीदारी में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बहुत सारी दुकानें ऐसी भी हैं जहां इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता
4: हालांकि इन दिनों क्रेडिट कार्ड और कैशलेस यानी नकद रहित भुगतान करने के तरीके आम होते जा रहे हैं मगर कम आबादी वाले क्षेत्रों में बहुत सारी छोटी दुकानें और अन्य सुविधाएं केवल नकदी ही लेती हैं, जिससे विदेशी पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है
1: वैसे क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाली दुकानों की संख्या बढ़ रही है कुछ ऐसे एटीएम भी हैं, जिनसे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जापानी येन निकाल सकते हैं आमतौर पर डाकघरों और कन्वीनियंस स्टोरों में एटीएम होते हैं और उनमें विदेशी कार्ड भी चलते हैं
4: फिर भी जापान में घूमते समय नकदी साथ रखना अच्छा है ये जानकारी भी पहले से इकट्ठा कर लेना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं
1: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा
4: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ होक्काइडो जाएंगी तब तक के लिए सायोनारा

0: 1900円です。
1: カードは使えますか？
0: はい、使えます。
2: आज के सबक का कलीदी जुमला है, मुझे दस्ताने चाहिए.
1: तेबुकरो गा होशीन देसु गा.
2: अगर आप इस अंदाज को याद कर लें, तो इसे कोई भी चीज खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.
3: तेबुकरो यानी दस्ताने और होशीन देसु गा के मायने है चाहिए. अब आज का नुक्ता. जब आप कोई चीज खरीदने जाएं और चाहते हैं कि दुकानदार वो चीज दिखाए, तो उस चीज के नाम के बाद गा और उसके बाद होशीन देसगा लगाएं. होशीन देसगा ई इसमें सिफत होशी यानी चाहिए के बाद न देसगा लगाकर बनाया गया है. न देसगा अपनी बात की वजाहत के साथ साथ इस बात का इशारा है कि आप मुखातिब से किसी जवाब की तवक्को रखते हैं.
2: तो मकालमे की सूरत हाल में थेबुकरो यानी दस्तानों के बाद गा और फिर होशीन देसगा यानी चाहिए लगाकर बनाया गया है. थेबुकरो गा होशीन देसगा यानी एक तरह से ताम दुकानदार से कह रही है कि मुझे दस्ताने दिखाएं. ऐसा ही है ना?
3: जी बिल्कुल ऐसा ही है.
2: तो सामीन सुनिए और दोहराइए. जुमले के आखिर में लहजा धीमा कर लेना बेहतर तासुर देगा.
4: होशीन देसु गा. तेबुकुरो गा होशीन देसु गा. तेबुकुरो गा होशीन देसु गा.
2: जी सामीन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा.
3: और अब एक दुकान में ग्राहक और दुकानदार के दरमियान होने वाला मकालमा सुनिए.
5: अनो सुमिमासेन, होक्काइडो नो ओमियागे गा होशीन देसु गा.
6: सो देसु ने, कोनो ओकाशी वा इकागा देसु का?
3: अब इस मकालमे की तशरीह.
5: अनो सुमिमासेन, होक्काइडो नो ओमियागे गा होशीन देसु गा.
2: वो माफ कीजिएगा, मुझे होकाइडो की सौगात चाहिए.
3: आनो ये किसी को मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ है. ओमी आगे के मायने है किसी इलाके की सौगात. अगर आपको समझ ना आ रही हो कि सफर के मकाम से क्या तोहफा ले जाएं, तो दुकानदार से ये जुमला कहना बेहतर होगा.
6: सो देसु ने, कोनो ओकाशी वा इकागा देसु का?
2: अच्छा, इस मिठाई के बारे में क्या ख्याल है?
3: सो देसु ने, ये अक्सर कोई मुनासिब जवाब सोचने के दौरान कहा जाता है. कोनो ओकाशी यानी ये मिठाई और इकागा देसु का किसी चीज़ की सिफारिश के लिए कहा जाता है, यानी ये चीज़ कैसी रहेगी या इस चीज़ के बारे में क्या ख्याल है.
2: तो सुनिए और दोहराइए.
4: ओमियागे गा होशीन देसु गा. होक्काइडो नो ओमियागे गा होशीन देसु गा. अनो सुमिमासेन, होक्काइडो नो ओमियागे गा होशीन देसु गा.
2: उम्मीद है आपने अच्छी तरह मश्क कर ली होगी.
3: अब इसी अंदाज की कुछ और मशकें. फर्ज करें आप गठड़ी बांधने वाला रिवायती जापानी रुमाल खरीदना चाहते हैं, तो दुकानदार से ये बात किस तरह कहेंगे? जापान के उस रिवायती बड़े रुमाल को कहते हैं
4: फुरोशिकी. फुरोशिकी.
1: अनो सुमिमासेन, फुरोशिकी गा होशीन देसु गा. अनो सुमिमासेन, फुरोशिकी गा होशीन देसु गा.
3: और अगर आपको छतरी चाहिए तो दुकानदार से कैसे कहेंगे? छतरी की जापानी है
4: कासा. कासा.
6: अनो सुमिमासेन, कासा गा होशीन देसु गा. अनो सुमिमासेन, कासा गा होशीन देसु गा.
3: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर. आज का जुमला मकालमे में ताम ने दुकानदार को अदायगी के वक्त इस्तेमाल किया है, इसे इसी तरह याद कर लें.
1: कादो वा त्सुकाएमासु का?
3: कादो वा त्सुकाएमासु का यानी क्या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है. यहाँ कादो दरअसल कुरेजित्तो कादो यानी क्रेडिट कार्ड की मुख्तसर शक्ल है. आप अपने पास मौजूद क्रेडिट कार्ड दिखाकर यूं भी पूछ सकते हैं, कोनो कादो वा त्सुकाएमासु का यानी क्या ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है.
2: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए.
7: कादो वा त्सुकाएमासु का?
8: कार्ड वा त्सुकाएमासु का?
9: कार्ड वा त्सुकाएमासु का?
2: जी सामीन, अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए.
4: कार्ड वा त्सुकाएमासु का?
3: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے جو وہ خریدنا چاہتی ہے.
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
0: 1900 円です。
2: カードは使えますか？
0: はい、使えます。
8: 春さんの知恵袋。
2: अब हारू सान की जंबील का कॉर्नर. आज का मौजू है जापान में क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल.
3: हीरा, आप खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती हैं?
2: हाँ जी, अक्सर करती हूँ क्योंकि इसे काफ़ी आसानी रहती है. इसे जापान में अक्सर होटलों, रेस्टोरानों और स्टोरों में कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है और यकीनन ऑनलाइन शॉपिंग में भी. लेकिन बाज़ दुकानों में कार्ड इस्तेमाल ना किए जा सकने पर मुझे हैरत होती है.
3: वैसे तो जापान में अब क्रेडिट कार्ड और अदायगी के दीगर ज़राए का इस्तेमाल काफ़ी आम है, लेकिन बाज़ जगहों पर خصوصاً دیہی علاقوں وغیرہ میں صرف نقد رقم سے ادائیگی ہی ممکن ہوتی ہے.
2: غیر ملکی سیاحوں کے لیے یہ کوئی خوش آئند صورتحال نہیں.
3: جی, آپ کی بات درست ہے, لیکن جاپان میں اب ایسی دکانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جہاں کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے ذریعے یعنی نقدی کے بغیر ادائیگی ممکن ہے. بعض اے ٹی ایم مشینوں سے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جاپانی کرنسی ین میں نقد رقم بھی نکلوائی جا سکتی ہے. ڈاک خانوں یا کنوینئنس اسٹورز میں اے ٹی ایم عام ہیں اور اکثر میں بیرون ملک جاری کردہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا ممکن ہے.
2: ویسے کہیں جانے سے پیشتر یہ چیک کر لینا بہتر ہوگا کہ کہاں کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں.
3: یقیناً, اور بیرون ملک سفر کی صورت میں کچھ نقد رقم تو لازماً ساتھ رکھنی ہی چاہیے.

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 7 जुलाई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। चीन ने पनडुब्बी से मिसाइल का प्रायोगिक प्रक्षेपण किया है, जिससे इस क्षेत्र के देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन के अनुसार ये परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप था और संबंधित देशों को इसके कार्यक्रम की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। चीनी नौसेना के अनुसार उसकी पनडुब्बी ने सोमवार दोपहर को एक सामरिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया, जिस पर नकली विस्फोटक सामग्री लदी थी। नौसेना ने बताया कि ये मिसाइल योजनानुसार प्रशांत महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में गिरी। नौसेना ने मिसाइल के गिरने की सटीक जगह का खुलासा नहीं किया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध समाचार पत्र द ग्लोबल टाइम्स ने अपने ऑनलाइन लेख में चीनी विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि परीक्षण में शायद जुलांग 3 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसे पिछले साल सितंबर में हुई सैन्य परेड में दिखाया गया था। लेख के अनुसार इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से अधिक है, यानी इसके दायरे में दक्षिणी और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र आ सकते हैं। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कहना है कि 1982 के बाद ये चीनी नौसेना का पनडुब्बी से किया गया पहला ज्ञात मिसाइल परीक्षण है और परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी से किया गया ये अब तक का पहला परीक्षण है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग का कहना है कि ये परीक्षण एक नियमित सैन्य प्रशिक्षण था और इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट देश या लक्ष्य को निशाना बनाना नहीं था। उन्होंने कहा कि परीक्षण कार्यक्रम की सूचना संबंधित देशों को पहले ही दे दी गई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून व अंतर्राष्ट्रीय तौर तरीकों के अनुरूप था। इसके बावजूद इस परीक्षण ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। प्रमुख अमरीकी समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने मंगलवार को होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट 2 व्यावसायिक जहाज़ों पर मिसाइलें दागी। अखबार ने एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी के हवाले से बताया कि इनमें से एक जहाज कतर की एक कंपनी के स्वामित्व वाला LNG गैस टैंकर प्रतीत होता है। इससे पहले ब्रिटेन के समुद्री व्यापार संचालन यानी UKMTO ने बताया था कि उसे होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट ओमान के तट के पास एक टैंकर पर अज्ञात वस्तु से हमला होने और टैंकर में आग लगने की सूचना मिली है, हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। 25 जून को भी जलडमरू मध्य के निकट एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ था, जिसके बाद 27 जून को एक अन्य टैंकर पर हमला हुआ था। ये हमले अमरीका और ईरान के बीच युद्ध समाप्ति से जुड़े समझौता ज्ञापन के प्रभावी होने के बाद हुए। उस समय अमरीकी सेना ने बताया था कि जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया, जिसके जवाब में अमरीकी सेना ने ईरान में रडार स्थलों, ड्रोन भंडारण सुविधाओं और अन्य ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोप लगाए थे। जापान स्थित उक्रेनी वाणिज्य मंडल ने जापान को नागरिक उपयोग के लिए उक्रेन की नवीनतम ड्रोन तकनीक उपलब्ध कराने से जुड़ी एक सहयोगात्मक व्यवस्था की नींव रखी है। गौरतलब है कि उक्रेनी वाणिज्य मंडल की स्थापना जापान में रह रहे उक्रेनी नागरिकों और अन्य लोगों ने की थी। जापान उक्रेन ड्रोन क्लस्टर नामक इस व्यवस्था के लिए सोमवार को टोक्यो में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। लगातार जारी रूसी आक्रमण के बीच उक्रेन ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे ड्रोन खराब संचार परिस्थितियों और सीमित GPS कनेक्टिविटी में भी काम कर पाते हैं। माना जाता है कि जापान में आपदा राहत व लॉजिस्टिक सेवाओं में ये तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है। क्लस्टर व्यवस्था का उद्देश्य दोनों देशों की संबंधित कंपनियों को आपस में जोड़ना है। मंडल के अनुसार 4 जापानी कंपनियां इसमें भाग लेने के लिए पहले से तैयार हैं।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने तोरी फुने ग्रहिका की छवियां जारी की हैं, जिसे एक खोजीयान ने पास से गुजरते समय ली थी। हयाबुसा 2 खोजीयान जापान समयानुसार रविवार शाम 6:30 बजे पृथ्वी से लगभग 10 करोड़ किलोमीटर दूर इस ग्रहिका के पास से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गुजरा। जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी जाक्सा ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में ये छवियां दिखाईं। हयाबुसा 2 की तोरीफुने ग्रहिका के सबसे करीब आने से 1 सेकंड पहले एक तस्वीर ली, जिसमें स्नोमैन आकृति की ग्रहिका और उसकी सतह पर कई चट्टाने देखी जा सकती हैं। जाक्सा ने सतह के तापमान को मापने में सक्षम कैमरे सहित अन्य उपकरणों की मदद से ग्रहिका का अवलोकन करने में भी सफलता प्राप्त की। एजेंसी का कहना है कि वो खोजीयान से प्राप्त सभी डाटा को पृथ्वी पर भेजेगी। रियुग्यू ग्रहिका से प्राप्त रेत और अन्य नमूनों वाले कैप्सूल को 2020 में पृथ्वी पर भेजने के बाद हयाबुसा 2 का यह विस्तारित मिशन शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत उसे तोरीफुने ग्रहिका के पास से गुजरना था। इस यान का अंतिम लक्ष्य 2031 में एक अन्य ग्रहिका पर पहुंचना है। जापान में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या पहली बार 10 लाख से नीचे आ गई है, जो किसानों की बढ़ती उम्र दर्शाती है। कृषि वानिकी एवं मत्स्य मंत्रालय ने एक सर्वेक्षण जारी किया, जिसके अनुसार इस वर्ष फरवरी में मुख्य रूप से खेती का काम करने वाले लोगों की संख्या 9,86,600 थी। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 4.8% की गिरावट आई है और 1985 में तुलनात्मक डाटा उपलब्ध होने के बाद से पहली बार ये आंकड़ा 10 लाख से कम है। 2010 में ऐसे लोगों की संख्या 20 लाख से अधिक थी और तब से ये संख्या 50% से भी कम हो गई है। आयु वर्ग के हिसाब से 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसानों का अनुपात 35.3% था, उसके बाद 70 से 74 वर्ष की आयु का 21.2% और 65 से 69 वर्ष की आयु के किसानों का अनुपात 13.7% था। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि किसानों की संख्या में गिरावट का रुझान जारी रहेगा, क्योंकि उनमें से कई बुजुर्ग हैं। उनका ये भी कहना है कि जापान की कृषि उत्पादन क्षमता में गिरावट को रोकने के प्रयास में वे कृषि भूमि को मिलाकर उसके पैमाने का विस्तार करने तथा कुशलता में सुधार करने के प्रयासों में सहायता करना चाहते हैं।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 19वें पाठ में दुकानदार को ये बताना सीखेंगे कि आप क्या खरीदने आए हैं।
1: ताम वियतनाम से आई विदेशी छात्रा है और हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस के ही दूसरे निवासियों मिया और काइतो के साथ उत्तरी जापान में होक्काइडो जाने वाली है। होक्काइडो में बहुत ठंड पड़ती है। वहां जाने की तैयारी करने के लिए ताम और मिया दस्ताने खरीद रही हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 19वें पाठ की बातचीत।
2: अनो सुमिमासेन तेबुकुरो गा होशी इन देसु गा।
3: 手袋はこちらです。
2: これあったかそう。いいですね。これいくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले ताम ने दुकानदार से कहा,
2: あの、すみません。
1: माफ कीजिए,
2: तेबुकुरो गा होशी इन देसु गा,
1: दस्ताने चाहिए।
0: दुकानदार ने जवाब दिया,
3: तेबुकुरो वा कोचिरा देसु,
0: दस्ताने यहाँ हैं।
1: फिर मिया ने दस्तानों की एक जोड़ी दिखाते हुए कहा,
2: कोरे अत्तकासो,
1: ये गर्म लगते हैं।
0: ताम ने दस्ताने पहन कर देखे,
2: ई देसु ने,
1: अच्छे हैं।
2: कोरे इकुरा देसु गा,
1: ये कितने के हैं?
0: दुकानदार ने बताया,
3: 1900 येन देसु,
0: 1900 येन के।
1: फिर ताम ने पूछा,
2: कार्डो वा त्साएमास का,
1: कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: तो दुकानदार ने उत्तर दिया,
3: हाई त्साएमास,
0: जी कर सकते हैं।
1: सर्दियों में होक्काइडो का तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ये दस्ताने ताम के बहुत काम आएंगे।
0: आज का मुख्य वाक्य है
2: तेबुकुरो गा होशी इन देसु गा,
0: यानी दस्ताने चाहिए। ये वाक्य याद करके आप दुकानदार को बता सकेंगे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं।
1: इस वाक्य में
4: तेबुकुरो
1: का अर्थ है दस्ताने और
4: होशी इन देसु गा
1: का मतलब है चाहिए।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी हो और आप चाहते हो कि दुकानदार आपको वो चीज दिखाए, तो उस चीज के नाम के बाद लगाएं कारक
4: गा
0: और उसके बाद कहें
4: होशी इन देसु गा। होशी इन देसु गा
1: बना है ई विशेषण
4: होशी
1: यानी चाहिए के बाद
4: देसु गा
1: जोड़कर
4: देसु गा
1: का उपयोग अपनी बात समझाने और सुनने वाले से मदद का अनुरोध करने के लिए किया जाता है।
0: यहाँ तेबुकुरो यानी दस्ताने के बाद आया है गा और उसके बाद होशीन देसगा, इसलिए वाक्य बना तेबुकुरो गा होशीन देसगा, यानी दस्ताने चाहिए।
1: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान रखिएगा कि वाक्य के अंतिम शब्द का सुर नीचे रखना है।
4: होशीन देसगा, तेबुकुरो गा होशीन देसगा।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला कुछ खरीदना चाहती है।

0: すみません、北海道のお土産が欲しいんですが。
1: そうですね、このお菓子はいかがですか。
2: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
3: पहले महिला ने पूछा,
0: すみません, 北海道のお土産が欲しいんですが。
2: माफ कीजिए, 北海道का उपहार चाहिए।
3: का भाव है और इसका उपयोग किसी को आवाज लगाने के लिए किया जा सकता है।
4: ओमियागे
3: का अर्थ है उपहार।
2: अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि परिजनों या मित्रों के लिए जापान से क्या उपहार लेकर जाएं, तो आप दुकानदार से ये सवाल पूछकर उनकी सलाह ले सकते हैं। तो अब सुनते हैं कि जवाब में दुकानदार ने क्या कहा।
1: そうですね。このお菓子はいかがですか？
3: अच्छा, ये मिठाई कैसी रहेगी?
2: इसमें
4: そうですね
2: का अर्थ है अच्छा। इसका इस्तेमाल जवाब सोचते समय किया जाता है।
4: このお菓子
2: का मतलब है ये मिठाई और
4: いかがですか
2: का अर्थ है कैसी रहेगी।
3: तो अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सामान बांधने का पारंपरिक जापानी कपड़ा यानी
4: फुरोशिकी
2: खरीदना चाहते हैं, तो दुकानदार को ये कैसे बताएंगे?
5: すみません, फुरोशिकी गा होशी इन देसु गा।
3: अब मान लीजिए कि आप शहर में टहल रहे हैं और अचानक बारिश होने लगी। आप एक कन्वीनियंस स्टोर में चले गए और दुकानदार से ये कहना चाहते हैं कि आपको छाता चाहिए। छाते को जापानी भाषा में कहते हैं
4: कासा।
3: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
1: すみません, कासा गा होशी इन देसु गा।
2: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
5: कार्ड वा त्स्काएमासु का?
4: कार्ड वा त्स्काएमासु का?
3: का अर्थ है कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: इसमें
4: कार्ड
2: का मतलब है क्रेडिट कार्ड। पूरे शब्द का उच्चारण है
4: क्रेडिट कार्ड।
2: आप अपना कार्ड दिखाते हुए ये भी कह सकते हैं
4: कोनो कार्ड वा त्स्काएमासु का,
2: यानी इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: तो आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
4: कार्ड वा त्स्काएमासु का?
2: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: すみません, 手袋が欲しいんですが。
6: 手袋はこちらです。
5: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
6: ?1900 円です。
5: カードは使えますか?
6: はい、使えます。
7: ハルさんの知恵袋。
3: अब सुनिए हारू जी की सलाह, जिसमें हम आज बात करेंगे जापान में क्रेडिट कार्ड के उपयोग की।
2: जापान में आप होटलों, डिपार्टमेंट स्टोरों और ऑनलाइन खरीदारी में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी दुकानें ऐसी भी हैं जहां इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता।
3: हालांकि इन दिनों क्रेडिट कार्ड और कैशलेस यानी नकद रहित भुगतान करने के तरीके आम होते जा रहे हैं, मगर कम आबादी वाले क्षेत्रों में बहुत सारी छोटी दुकानें और अन्य सुविधाएं केवल नकदी ही लेती हैं, जिससे विदेशी पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
2: वैसे क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाली दुकानों की संख्या बढ़ रही है। कुछ ऐसे एटीएम भी हैं जिनसे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जापानी येन निकाल सकते हैं। आमतौर पर डाकघरों और कन्वीनियंस स्टोरों में एटीएम होते हैं और उनमें विदेशी कार्ड भी चलते हैं।
3: फिर भी जापान में घूमते समय नकदी साथ रखना अच्छा है। ये जानकारी भी पहले से इकट्ठा कर लेना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं।
2: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
3: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ होक्काइडो जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना मुमकिन है।
1: वैसे कहीं जाने से पेशतर ये चेक कर लेना बेहतर होगा कि कहाँ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है और कहाँ नहीं।
0: यकीनन, और बैरून मुल्क सफर की सूरत में कुछ नकद रकम तो लाजमन साथ रखनी ही चाहिए।